सोच। LG ले ले आयो नया LG Essential Series, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कम्प्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ। हरेक घर को खुशी घर घर में LG, LG Life's Good।

0: ऑडियो बुकिंग करने के लिए संपर्क करें 9765295897।
1: गरिमा
2: बन
1: चलचित्र पर्दैसीको गीत सुन्छस्?
2: सुनाउ न त।
1: ल, तँ पनि गा है त।